0: चांगलं की नाही मत कॉस्मेटिक्स वाला सिनेजी औरंगाबाद वकिसोपुरी हंगूपट बाजार की असंगीत बाजार की समृद्ध आसमानी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की तमाम प्रोडक्ट्स आपसे लगा अंदर रस्ते वाली नौशहरा की अजमेरी फार्मेसी अजीज फार्मेसी वाला सर अकोला खटक बाजार के तहत फॉल प्लाजा की मोदी बाजार की वाहिद कॉस्मेटिक नवीद कॉस्मेटिक नजीर कॉस्मेटिक लाल मोहम्मद कॉस्मेटिक फ्रेंड्स कॉस्मेटिक्स वाला सर उदित सर सर कारी सुलेमान कॉस्मेटिक्स वाला सर तुम तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला जी शांति जहांगीरी किस्म गवा सुपुरी रुखसार फार्मेसी डिस्काउंट कॉस्मेटिक गोबंधु बाजार चेयरमैन मार्केट की हामिद कॉस्मेटिक्स वाला सर हम जमुन तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स में लावे दले जी शासित किस्म गवा सुपुरी जवाद कॉस्मेटिक्स वाला सर मेहर प्लाजा की एवी कॉस्मेटिक मरदान रोड बने जी आज दिन तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स में लावे दले जी जुम्मन आवास के दवा की सुवाद की सुपुरी बादल के नस्ल मीना बाजार सुवाद हाजी अब्दुल जमील से शेर बादल के नस्तर शादी अली गार्मेंट्स वाला सरा सुवाद कीजिए शेरगढ़ किस्म गवा सुपुरी गनी सुपर मार्ट हो दकशानी शम्स करियाना स्टोर और चक्कर किस्म गवा सुपुरी फैमिली कॉस्मेटिक मस्कारा कॉस्मेटिक जारा मार्ट वाला सरा चक्कर कीजिए फवाद जनसोर थाना मलिकगंज की जुबेर जनसोर थाना मलिकगंज की बटखेले किस्म गवा सुपुरी खैबर जन स्टोर शाह हुसैन कॉस्मेटिक अलमदीना प्लाजा अदा कशांति मदीना जन स्टोर अबास जन स्टोर वाला सर हम तुम तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला रशीफ बटखेले बाजार के हजी तमाम पिशावर की उमर फार्मेसी जिसम हम ब्रांची थी जमीन तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स आप सब इंतजार दीजिए ताकि सुबह आवाज के बनू की सुपुरी करक की सराय नोरे की गंडी चौक की अमीरी कला की विराशाह की मिरली की शुमारी वजरिस्तान जुनूबी वजरिस्तान मंजीवाले चौक लेकी मरवत हामिदानो चौक असम तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स आप सब इंतजार गुहाट में आखिर बाजार के हम जमंग आसमानी प्रोडक्ट्स आप सब इंतजार दीजिए आओ से बसुमंग आवास का दावा की सुकू रिचर्द जी अपर दीर की वहीद गुल कॉस्मेटिक अनवर शाह रेबू आयसर रहमान कॉस्मेटिक की आओ सुमंग आवास का दावा की सुख बाजेवड़ एजेंसी की उड़िया सुमृद कॉस्मेटिक्स बाजेवड़ एजेंसी की जमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स आपको अंदर रहते वाले देखा जी कथाए मुख्तसर इंशाला कभी वफा सगान वफा होगा जीवन वफा होगा दर सबा बोरी जो दी पार सब सबकूरी प्रोग्राम सर सब खिदमत की हाजिरी गुजी तारा गेद ऊपर इकबल रोड आकर इस तरह जल्ला इजाजत पर की दल अल्लाह फमान आसमानी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है
3: क्या की है दुनिया लेकर
1: मोहब्बत समेट कर

ग्राउंड में विकास करे रेडियो अमानी के चैनल पर शिशारी चार पता ग्राम प्रोग्राम जिंदगी आउटिंग खबरों को लगा चिदा शराब चिदी दब और न बिल्कुल हालात तरदी पूरी चीज कला खजो बदर उसे मुसलमानों तश फतह मेरा उसका काफिरान तख्ती गदर दिन रुस्त बाकायदे या सहाबा इकराम नास्ती वक्त को महसूल किया।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 पटग्राम चुन लिया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बत समेत मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज में, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक आज़ अपनों को पास लाने का।

चल दीन की तबलीग में चलने कमदारे अल्लाह के रस्ते में निकलने कमदारे